अजय सरों में पीखे खाए ऐसी दरगे मिले सजाए रोवे रामन काला पया सीता लखमन विछड़ गया रोवे दसर लंक गवाए जिन सीता अंधी डारू आए रोवे पांडव पै मजूर जिनके स्वामी रहते हजूर रोवे जन्मे जाख गया एक ही कारण पापी पया रोवे शेख मसा एक पीर अंतकाल मत लग

लोगन स्यो मेरा ठाठा बागा, बाहर सूत सदल स्यो मौला, अलिप्त रहो जैसे जल में कौला। मुख की बात सगल स्यों करता, जी संग प्रभ अपना धरता। दीस आवत है बहुत बियाला, सगल चरण की एहो मन राला। नानक जन गुर पूरा पाया, अंतर बाहर एक दिखाया। पूरा

ये बेनती कौन कर रहा है, ये अरदास कौन कर रहा है। गुरु नानक नूं जिस किसे ने भी जिथे किथे पुकारिया, गुरु नानक उस दे दुख कटन वास्ते पहुंच गया। अज संसार नूं तार दे होए धन गुरु नानक सच्चे पातशाह दीपालपुर दी धरती ते जा पहुंचे। शामा दा समा है, ते साहब जी ने मर्दाने नूं आख्या भई जा मर्दानिया ओ दुकानदार कोल पुछ भई कि असी मुसाफिर हां, प्रौणे हां, संसार ते आए और इथे मुसाफिर बन के दीपालपुर आए हैं, भाई एक रात बितानी है। जे रात तू दुकान बंद करके घर जावे ता असी तेरी दुकान दे बाहर आराम कर लवांगे। दीन दुनिया दा मालक सर्वशक्तिमान आप नारायण कलातार धन गुरु नानक सच्चा पातशाह रात ठहरन वास्ते थां मंग रहे। सात सगत बोलो श्री ते जदों मर्दाना दुकानदार को लगया भाई आ तू हट्टी बंद कर लो मैं तां सी रात इत्थे ठहर जाइए। वो कहिंदा भाई मैं आप नू जानदा कोई नहीं, मेरी तुहाडे नाल कोई जान पहचान नहीं, ते तुसी इत्थे ना ठहरो, किथे होर चले जाओ। संसार ते ऐसे भी सन जिन्हां ने गुरु नानक दा दर्शन पा के भी ओदे चरणा दी शो ना लै सके। भाग होवन तां चरणा दी शो प्राप्त होवे। कह दिता महाराज असी तुहानू नहीं जानदे, कृपा करो अगे चले जाओ, रात ठहरन वास्ते किथे होर थां ढूंढ लो। दीन दुनिया दा मालक जगत गुरु धन गुरु नानक सच्चा पातशाह कहन लगा चल मर्दानिया भाई जे इथे नहीं ठहरन दी थां तां किते होर चली, चल इस पिंड विचों बाहर चली, शामा दा समा है। मर्दानिया ने अखां उते हाथ रख के वेख्या, आख्या बाबा ओ दूर एक झुग्गी जिदे विच रोशनी है, लेकिन है इथों दूर पिंड तो बाहर दिखदी है। हजूर कहन लगे चल मर्दानिया फिर अज रात उथे ही बिताईए, चल के रात उथे ही कीर्तन करिए, उथे ही परमेश्वर दे गुण गाई, अज रात सफली करिए। साहब जी धन गुरु नानक सच्चे पातशाह बाले मर्दाने नू नाल लीता और जदों उस झुग्गी दे बाहर आके खड़ोते, साहब जी ने आख्या मर्दानिया जा भई अंदर वेख इस झुग्गी दा मालक कौन है, ते उहदे कोलों पुछ भई अज रात असी इत्थे बिता लईए, सवेरे चले जावांगे। ते जदों मर्दाना झुग्गी दे अंदर गया ते झट बाहर आया, मुंह ते पल्ला मर्दाने दे, गरीब निवाज अंदर तां बड़ी बदबू है, क्यों मर्दानिया? पातशाह अंदर एक कोड़ी पिया होया है जिसे हाथ पैर कोड़ दे नाल गल चुके हैं, सारी थां अंदर बदबू हुई पई है। गरीब निवाज अंदर इत्थे रात नहीं ठहरन दी कोई थां। हजूर कहन लगे मर्दानिया जा उस कोड़ी नूं बार सद के लिया,
गरीब निवाज ओ तां तुर भी नहीं सकदा, ओदे तां पैर ही गल चुके हन घोड़ दे नाल। अच्छा मर्दानिया, जे ओ आप नहीं आ सकदा तां तू उसनू खिच के बाहर ले आ। मर्दाना, उस कोड़ी नू ध्रू के खिच के बाहर लिया, ते लिया के गुरु नानक सच्चे पातशाह दे सन्मुख कीता। लो गरीब निवाज साहब जी ने तकिया कोड़ी वाल, मेर दी नजर कीती। कोड़ी ने जदों गुरु नानक सच्चे पातशाह दे दर्शन कीते, ऐसे रूहानियत दे दर्शन कीते, अकाल पुरख वाहेगुरु दे रूप दे जदों दर्शन कीते, तां कोड़ी दा तन मन ठर गया। आ जिस कोड़ दे विच हाय हाय बिलख रहा सी, कुरला रहा सी, ओ दुख भुल के गुरु नानक वाले अखां ला के तक रहा है। आख्या, महापुरखो, हे रब दे प्यारे हो, रब दे रूप कितों आए हो, ते मेरे जैसे कोड़ी दे कोल रात ठहरन वास्ते जिसनू घर वालिया ने भी कढ छड़िया, दुरकार के कढ छड़िया, क्योंकि किस वेले मैं भी बहुत धनी सा, मेरे पास बहुत पैसा सी, मां प्यां दा साया सिर तो उठ गया, ते जितने मित्र दोस्त सन सारे धन नू ही चाहन वाले सन। ऐसी कुसंगत मिल गई मित्रां दी दोस्तां दी कि मैं गलत रस्ते तुर पिया, ते ओ जेड़ा धन सी उदे नाल मैं पाप कीते, ते जदों धन खत्म हो गया ते मित्र दोस्त भी साथ छोड़ के चले गए, ते उस धन दे नाल जदों मैं पाप कीते सन, ओ पाप हुण मेरे तन ते कोड़ बन के फुट पए हन। सात सगत बोलो श्री, हुण जदों मैं कोड़ी हो गया तो मेरे घर वालिया ने भी आख्या, हुण तू घर दे विच रहण दे लायक नहीं, क्योंकि तू छूत दी बीमारी है, जे तेरे नाल कोई होर लगेगा ओ भी कोड़ी हो जाएगा। इस वास्ते मैनू आ घरों पिंड विचों कढ़ के इत्थे चुगी पा के बिठा गए। कितने कितने दिन बीत जांदे हन, मैनू मनुख दी शकल नहीं दिसदी। कोई तरस करके रोटी रख जावे तां मैं खा लैंदा, नहीं तां भुखे ही समा बीत जांदा। लेकिन हे रब दे प्यारियो, तुसी आज इस स्थान ते जिसनू संसार विच सारिया ने दुरकार दिता, सारिया ने निकाल दिता, तुसी मेरे कोल रात ठहरन वास्ते आए हो, मैं आप दी किवें सेवा करां, मेरे हाथ नहीं, मेरे पैर कोई नहीं, आ वेखो कोड़ लग्या होया हथां पैरां नू, जे इना हथां दे नाल मैं साध संगत दी सेवा कर लेंदा तां खबरे आ दुख मैनू ना लगदा, जे इना पैरां दे नाल मैं माड़े पासे तुर के ना जांदा, सत्संग वल जांदा, तां अज मैं कोड़ी ना होंदा। लेकिन आए हो तां हुण मेरे ते कृपा करो। गुरु नानक सच्चे पातशाह ने जदों उस दा कोड़ी दा आ विरलाप सुनिया, दुख सुनिया, कोड़ दे विचकार बिलख रहा है, तां धन गुरु नानक सच्चे पातशाह ने उत्थे तनाशरी राग दे विच शब्द उचारिया, ये साहब जी ने की आख्या,

परमेश्वर दा नाम विसार के जे कोई सुख मंगदा है आख्या उसनू तां सुपने विच भी कदे सुख प्राप्त नहीं हो सकदा। सतसंगत बोलो श्री जियो तपत है बारो बार तप तप खपे बहुत बेकार जै तन बाणी विसर जाए ज्यों पक्का रोगी बिल लाए बहुता बोलन चखड़ होए बिन बोले जाने सब सोए जिन कन कीते अखी नाक जिन जेबा दिती बोले तात जिन मन राखिया अग्नि पाए वाजे पवन आखे सब जाए जेता मोह प्रीत स्वाद सभा कालख दागां दाग दाग दोष मोह चलिया लाए दरगे बैसन नहीं जाए आख्या जो संसार ते आके ना

मौत बन के आ गया। कोई मेरे गुरु गोविंद सिंह महाराज जी दे बच्चियां नू नीहां विच खिलार के जुल्म करे, ऐ गल बाबा बंदा सिंह जी बहादुर कोलों बर्दाश्त ना होई। सूरमे दे अखां विच खून उतर आया, डोले फरक गए। ओ जलाद जिड़े आखदे सन गोड्यां दियां चपणियां उतार दो, कंध ना बिंगी होवे। समाणे दे रहण वाले ओ जलाद जिन्हां ने बच्चियां दे गोड्यां दियां चपणियां उतार दित्तियां सन, अज इन्हां जुलादां नूं घरों कढ के मारिया ते नाल 500 सिपाही नूं भी मार दित्ता है। जदों ये खबरां सरहंद विच पुजियां, बंदा सिंह बहादुर आ रहा है, हजारां दी गिणती विच शाही फौजां कठियां हो गईयां ने। अज बाबा बंदा सिंह बहादुर ने सरहंद दे उपर

हूं ना डरो। ए मालिक सानू एहो जिहा वर दे शुभ कमां तों पिछे ना हटिए, जुलम नूं देख के कदम पछां ना खिचिए, साडी जान ते बेशक चली जाए।

गाउंदी होई अज एक मां धर्म दी खातर अपने पुत्र नू बार के टुर गई है। किमें चाह है सिंघां नू शहीदियां दा, इन्हां नू मौत कोलों डर नहीं आंदा? नहीं ओए, इन्हां नू मौत कोलों डर नहीं आंदा, सगों मौत इन्हां कोलों डरदी। दरबार सजिया है, कलगीधर महाराज तख्त ते बैठे ने, पिछे बैठी एक माई रोई जांदी। सतगुरां ने इस नू कोल बुलाया, क्यों बई क्यों रोंदी है, तेनू की गल है, केड़ा दुख है? महाराज, मेरा पति ते मेरे दो पुत्र जंग विच शहीद हो गए सन। ਉਹ ਸਮਾਂ ਮੈਨੂੰ ਅਜੇ ਤੱਕ ਯਾਦ ਹੈ ਜਦੋਂ ਤੁਹਾਡਾ ਸੁਨੇਹ ਸਾਡੇ ਘਰ ਤੱਕ ਪੁੱਜਾ ਸੀ ਕਿ ਮੈਦਾਨੇ ਜੰਗ ਵਿੱਚ ਜਾਣਾ ਹੈ। ਮੇਰੇ ਪਤੀ ਨੇ ਕਿੰਨਾ ਹੀ ਪੁੱਤਰਾਂ ਨੂੰ ਕੋਲ ਬਿਠਾਇਆ ਤੇ ਆਖਿਆ, ਬੱਚਿਓ ਅੱਜ ਉਹ ਸਮਾਂ ਆ ਗਿਆ ਹੈ, ਆਪਾਂ ਕੁਰਬਾਨੀ ਦੇ ਕੇ ਕਲਗੀਧਰ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਦੇ ਸੁਪੁੱਤਰ ਹੋਣ ਦਾ ਸਬੂਤ ਦਈਏ। ਬੱਚਿਓ, मदाने जंग विच जा के कदम पछा नहीं पुटने, अगे होना है। जदों मैं एक खबरां सुनांगा ना कि कलगीधर दी जित हुई है, मेरे बच्चे बेशक शहीद होए ने, ते मेरा फकर नाल सिर उच्चा हो जाएगा, मैं माण महसूस करांगा। इनी गल आख के ये माता फिर रोण लग गई। कलगीधर आखन लगे, सिंघणीए तू पंजां ककारां दी त्यार पुर त्यार सिंघणी हो के शहीद पति ते पुत्रां दी खातर रोंदी है, सोभा नहीं देंदा। ना महाराज, ऐ गल नहीं, माता आख रही है, ना महाराज ऐ गल नहीं। हजार वार इस धरती ते आवां, हजार वार तेरी शान दी खातर पति ते पुत्रां नू बाहर जावां, कौन मरनों डरदा है? रोना इस गल दा है जदों मेरा पति ते पुत्र घरों जंग वास्ते टुरन लगे सन ना, ते एक मेरा पुत्र बीमार हो गया है, जो अजे तक बीमारी नाल मंजे ते पिया है। मैनू डर रहिंदा है किते बीमारी नाल ही काल वस ना हो जावे। महाराज, मेरे पुत्र नू ठीक कर दे, तेरे एक इशारे ते मैं अपने पुत्र नू नाल ले के मदाने जंग विच जूझ जावां। महाराज सुन के हैरान होए, कलगीधर चमत्कार विच ए इतिहास लिखिया है अज जो तुसी इस कैसट विच सरवण कर रहे हो। तन तन है सिंघणीए सिदक तेरा, भले जगत दी खातर आप मोई। तन है सिंघणीए, तू अपने पति ते पुत्रां नू जीवन मुक्त करवा लिया, फिक्र ना कर, तेरा पुत्र बीमारी नाल नहीं मरेगा, ना कर फिक्र। गरीबां ते मजलूमां दी खातर सरबत दे भले लई जंग विच जूझदा होया शहीद होएगा ते गुरु नानक दी गोद विच जा वराजेगा, जीवन मुक्त हो जाएगा, जीवन मुक्त होवेगा। चरणा नू पकड़ लिया, महाराज एयो ही चांदी सी, मेरा पति ते मेरे दो पुत्र तेरे इशारे ते शहीद हो के सचखंड बराजे होणगे, ते असी क्यों बांझे रह जाइए? गुरु गोविंद सिंह महाराज जी दा उपदेश कदी भी सिंघां ने नहीं भुलाया, अज तक भी सरबत दे भले लई अपना सिर अगे डा देंदे ने। एयो ही अरदास, देहे शिवा बर मोहे एह, शुभ करमन ते कब हो ना डरो, ना डरो अरसों जब जाए लरो, निश्चे कर अपनी जीत करूं। ए महाराज, ए सतगुरु, ए मालक,
ਸਰਬੱਤ ਦੇ ਭਲੇ ਲਈ ਕਰਮ ਕਰਦਿਆਂ ਹੋਇਆਂ, ਚੰਗੇ ਕੰਮ ਕਰਦਿਆਂ ਹੋਇਆਂ ਸਾਡੇ ਕਦਮ ਕਦੇ ਵੀ ਪਛਾਹ ਨਾ ਹਟਣ। ਇਹ ਸਿਰ ਤੇ ਬੇਸ਼ੱਕ ਚਲਾ ਜਾਏ, ਅਸੀਂ ਸਿਦਕੋ ਨਾ ਹਾਰੀਏ। ਤੂੰ ਸਾਨੂੰ ਇਹੋ ਜਿਹਾ ਬਲ ਦੇ, ਤੂੰ ਸਾਨੂੰ ਇਹੋ ਜਿਹੀ ਅਸੀਸ ਦੇ।

गुरु अर्जुन देव पातशाह बख्शिश कर रहे हैं चरण छलो मार्ग गोविंद। ए केड़ा मार्ग है जिथे जीव चल के अपना लोक भी सुखी ते परलोक भी सुहेला कर सकता है। ओ मार्ग है उस्तत मन में कर निरंकार, हर वेले अकाल पुरख वाहेगुरु ईश्वर दी उस्तुति करनी ओदे गुण गाउने। ए मार्ग है जिस करके जीव भव सागर तो पार हो सके। पुस्तक मन में कर निरंकार, कर मन मेरे सत व्यवहार, निर्मल रसना अमृत पीवो। ए रसना पवित्र हो जाती है जदो नाम दा अमृत पींदी है जपदी है श्री वाहेगुरु। निर्मल रसना अमृत पीवो सदा सुहेला, कर ले जियो नैनो पेख ठाकुर कारण। जिन्हां दे हिरदे विच नाम दा अमृत समा गया है उन्हां नूं फिर संसार दे लोग अकाल पुरख वाहिगुरु दा परिवार नजर आउंदे हन। जे उदा परिवार है तां एक पिता एक सखे हम बारक। साडा एक पिता है ईश्वर और असी सारे ही उसदे बारक हां। ऐसी दृष्टि हो जाती है नाम जपन दे नाल के ना को बैरी नहीं बेगाना सगल संग हमको बने आई। हजूर बख्शिश कर रहे हन के नैनो पेख ठाकुर का रंग, साध संग बिन से सब संग। सत संगत च बह के अकाल पुरख दे गुण गाउन नाल तेरिया होर माड़िया जितनिया भी आदतां हन संगतां हन ओ आपे ही तेरा पिछा छड़ जानगी। आओ सारे प्यार दे नाल जप।

0: मुहतार
1: सतपुरख जिन जानिया ऐसे गुरु तो बल बल जाइए
0: सतपुरख जिन जानिया

जितने माई भाई बैठे हो सारे प्यार नाल रसना पवित्र करया करो। पोथियां सामने रखण दा एहो एक फायदा है, इंसान चंगी तरह बोल सकदा है। इसलिए सारे प्यार नाल करीबन सारी संगत ही पोथियां रखदी है, फिर पढ़दे क्यों नहीं? पढ़ो सारे, कोई रसना खाली ना रवे। आओ साहेब पंचम पातशाह जी दियां कैसियां ये प्यारियां तुकां ने, पढ़ो सारे।

तू सुचा समझ के लिया ओता झूठ है किवें परमेश्वर ने 84 लाख जूना पैदा कीती है।

पर फिर सोचे मना ए जेड़े फुल तू सुचे समझ के लिया है ए ता झूठे किवें जदों फुल खिड़दा है ता पवरा उन्हों सुंग जांदा है।

इस तरह रम्य होया है जिस तरह दर्पण शीशे दे विच साडा चेहरा मौजूद है। जदों शीशा देखांगे सानू साडा मुंह नजर आवेगा। इसे तरह ही वो परमेश्वर है, जदों देखांगे

संत बाबा तरसी महापुरुष मस्तु आने वाले कोल गुरसिख बैठे ने एक कल्याण सिंह भी बैठे महापुरखा ने आख्या अज भई चित कर दे धर्म दे किरत दी रोटी खाई किरत दी रोटी कहन लगे महाराज जो हुक्म अज ही प्रबंध कर लेने हैं मजदूरां वाले कपड़े पा ले एक ठेकेदार दे कोल चले गए जेड़ा बिल्डिंग बना रहा सी भाई कल्याण सिंह जी पंच सत गुरसिखां नूं नाल लेके जदों उहदे कोल पहुंचे हन कहन लगा जी असीं मजदूरी करना चाहते हां करो अठ घंटे काम करना पड़ेगा ठीक है करांगे मजदूरी तय हो गई जितना काम अठां घंटियां विच करना सी चौं घंटियां विच कर दिता एक बारी प्यार नाल बोलिए ठेकेदार ने बुला के आख्या ऐ फड़ो पैसे ते जाओ कहन लगे नहीं वायदा अठ घंटे दा फिर दुगनी मजूरी देन लगा कहन लगे नहीं जो बचन होया है ओ ही लवा कहन लगा पहले मजदूर वेखे ने अजीब आदमी हैं ऐसे बंदे ता मिले नहीं खैर जदों उन्हां पैसियां दा समान लियांदा आटा प्यो दाल ते फिर हथी बना के बाबा अतर सिंह जी नूं छकाया छक के बाबा जी इतने प्रसन्नता विच आए कहन लगे अज ते लंगर छकन दा आनंद आ गया कल आपां भी चलांगे पाए बाबा अतर सिंह जी ने भी मजदूरां वाले भेस कर ले अज उसे ठेकेदार कोल पहुंचे अज भी भाई काम मिलेगा ते ठेकेदार उन्हां वल बार बार तक रहे है कि ए मजदूर नहीं हन ए कोई फरिश्ते नहीं ए कोई होर लोक दे बंदे आए है ते जदों वेखदियां वेखदियां बाबा अतर सिंह जी ते निगाह पई ते चरना ते डिग पिया कहन लगा तू मजदूर नहीं है ऐसा नाम रतन निर्मोलक उन पदार्थ पाया अनक जतन कर हृदय राख्या रतन न छपे छपाया गुरु की साथ संगत कहन लगा तुसी मजदूर नहीं ते कल दा ही मेरे दिमाग ते बड़ा बोझ पिया होया है ते अज तुसी आए हो मैनू माफी दे दियो मैं ए गुनाह नहीं कर सकदा कि तुसी मेरे सामने टोकरी चुको कुछ सिख लंघ रहे सन उन्होंने वेख्या होए बाबा अतर सिंह जी इत्थे खड़े ने ते झट चरना ते मथा टेकिया गुरु की साध संगत कहन लगे बाबा जी आप दी किरत तां एहो ही है कि आप कीर्तन सुनाओ सानू चंगे राह लाओ ते आप इस भेस विच खड़े हो ते फिर कहंदे ने बाबा अतर सिंह जी ने सिंघां वल वेख्या
ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਭਾਈ ਅਸੀਂ ਹੋਰ ਕਿਸੇ ਕੰਮ ਨੂੰ ਆਏ ਸੀ, ਹੁਣ ਤਾਂ ਪਕੜੇ ਗਏ, ਹੁਣ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਸਾਡੀ ਚੱਲਣ ਨਹੀਂ ਦੇਣੀ, ਚਲੋ ਭਾਈ ਕੀਰਤਨ ਕਰਦੇ ਆ, ਪਰ ਕਿਸੇ ਗਰੀਬ ਕਿਸੇ ਕਿਰਤੀ ਦੇ ਬੰਦੇ ਦੇ ਘਰੋਂ ਸਾਡਾ ਲੰਗਰ ਆਣਾ ਚਾਹੀਦਾ, ਫਿਰ ਜਿਤਨੇ ਦਿਨ ਮਰਜ਼ੀ ਕੀਰਤਨ ਕਰਵਾ। ਤੇ ਗੁਰੂ ਕੀ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਲਿਖਿਆ ਇਤਿਹਾਸ ਵਿਚ 18 ਦਿਨ ਬਾਬਾ ਜੀ ਉਥੇ ਰਹੇ ਹਨ, ਤੇ 18 ਹੀ ਦਿਨ ਫਿਰ ਲੱਭ ਲੱਭ ਕੇ ਜਿਹੜੇ ਕਿਰਤੀ ਸਿੰਘ ਸਨ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਬਈ ਬਾਬਾ ਜੀ ਲਈ ਲੰਗਰ ਬਣਾਉਣਾ ਹੈ, ਕੀ ਖਿਆਲ ਹੈ? ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਧੰਨ ਭਾਗ। ਤੇ ਬਾਬਾ ਜੀ ਦਾ ਲੰਗਰ ਉਹਨਾਂ ਕਿਰਤੀਆਂ ਦੇ ਘਰਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਆਉਂਦਾ। ਭਾਈ ਗੁਰਦਾਸ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਐ ਗੁਰੂ ਕੇ ਪਿਆਰੇ, ਕਿਰਤ ਤਾਂ ਤੂੰ ਕਰਦੇ ਪਰ ਧਰਮ ਨੂੰ ਤੂੰ ਗੁਰਦੁਆਰੇ ਹੀ ਛੱਡ ਜਾਂਦੇ, ਨਹੀਂ ਤੇਰੇ ਹੱਥਾਂ ਵਿੱਚ ਧਰਮ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ, ਤੇਰੇ ਅੱਖਾਂ ਵਿੱਚ ਧਰਮ ਨਹੀਂ ਹੋਵੇਗਾ ਤੂੰ ਗਲਤ ਵੇਖੇਗਾ, ਤੇ ਜੇ ਆਪਾਂ ਪੈਰਾਂ ਵਿੱਚ ਧਰਮ ਨਹੀਂ ਹੋਏਗਾ ਤੇ ਗਲਤ ਰਸਤੇ ਤੇ ਤੁਰਨਗੇ, ਤੇ ਸਾਡੀ ਕਿਰਤ ਵਿੱਚ ਧਰਮ ਨਹੀਂ ਹੋਏਗਾ ਉਹ ਬੰਦਾ ਲੋਭੀ ਹੋ ਜਾਏਗਾ, ਮਿਲਾਵਟ ਵੀ ਕਰੇਗਾ, ਹੋਰ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਕਿਤਨਾ ਅਨਰਥ ਕਰ ਦੇਗਾ। ਇਸ ਲਈ ਭਾਈ ਗੁਰਦਾਸ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਸਾਨੂੰ ਤਾਕੀਦ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਆਓ ਇਹ ਤੁਕਾਂ ਪੜ੍ਹੀਏ ਤੇ ਸਮੇਂ ਸਿਰ ਸਮਾਪਤੀ ਹੋਈ।

पूछा बादशाह, बड़ा आदमी कौन है जिसकी बहुत सी कारें हैं, जिसकी बहुत फैक्ट्री है, जिसके बहुत से बंगले हैं? नहीं, जो संगत के अंदर आकर अपने अहंकार को छोड़ता है वो ही सबसे बड़ा इंसान है।

पाट जिसका नाम मथुरा है, आप कहिंदा है जपियो जिन अर्जन देव गुरु फिर संकट जोन गर्भ न आए। जो भी प्यार नाल मन करके गुरु अर्जन देव पातशाह दा नाम जपेगा, जो एक वरा मन करके प्यार नाल आखेगा धन गुरु अर्जन देव, सारे प्यार नाल जपो धन गुरु अर्जन देव। जपियो जिन अर्जन देव गुरु फिर संकट जोन गर्भ न आए, ओ फिर कदे भी गर्भ जूनिया विच नहीं पवेगा, 84 लाख त्रिगट जूनिया तो मुक्त हो जाएगा। जब लो नहीं भाग लिलार उदे, तब लो परम ते फिरते बोतायो। मथुरा कहिंदा पट के जद तक साडे भाग नहीं समझागे, असी संसार विच विचर रहे सन, लेकिन कल युग दे विच आके सानू जदों गुरु अर्जन देव पातशाह दे दर्शन होए, ते सचमुच फिर उस हरी विच और गुरु अर्जन विच कोई फर्क नहीं है, क्योंकि गुरु अर्जन देव पातशाह गुरु नानक दे पंजवें स्वरूप, पंजवें गुरु नानक धन गुरु अर्जन देव महाराज, और जिस गुरु नानक दी उस्तत गावे जनकाद जुगाद जुगेसर हर रस पूरन सर्व कला, गावे सनकाद साद सिदादक मुन जन गावे अचल छला, गावे गुण तोम अटल मंडलोए, भगत पाए रस जानियो कब कल सुजस गावो गुरु नानक राज जोग जिन मानियो। उस गुरु नानक दे गुण जदों राजे जिनक दा दरबार लग्या सी, और उस दरबार विच वड्डे वड्डे रिखी महापुरख तपस्वी जोगी आके राजे जिनक दे चरणा दी धूड़ लै रहे सन, क्योंकि भाई गुरदास जी कहिंदे ने भगत वड्डा राजा जिनक कै गुरमुख माया विच उदासी। राजा जिनक जिसने बड़ी तपस्या की, और भगत वड्डा क्यों गिणिया गया है, क्योंकि राजे जनक ने राज विच रह के अपने आप नू माया तो निर्लेप रखिए। सात संगत बोलो श्री, ते भाई गुरदास जी कहंदे इस वास्ते राजा जनक वड्डा है। ते एक वरां दा जिक्र, राजा जनक देव लोक नू गया, देवते भी लोचते हैं कि कोई जपन वाला साड़ी पुरिया विच चरण पावे। जिस वेले राजे जनक नू देव लैके देवते लैके अपनी पुरिया विच जा रहे सन, ते रस्ते विच बड़े रोण दी कुरलाउण दी आवाज आई। राजे जनक ने पुछया ए कौन रो रहे हैं, तां देवतियां ने दस्या महाराज ए नरक हैं, जिथे पए होए जीव अपने कर्मा दे अनुसार भोग भोग दे, क्योंकि इन्हां जीयां ने जाके संसार ते नाम नहीं जपिया, भगती नहीं कीती, इस वास्ते भगती ना करन करके इन्हां ने अपना मनुखा जन्म जेड़ा हीरे लालां तो भी महंगा सी, जेड़ा स्वास हीरे लालां तो भी महंगे सन, इन्हां ने मिट्टी विच रोल दिते। ताई आखिया बंदगी ना कीती आ हीरा जन्म पाके, जे तेनू मनुखा जन्म वाहिगुरु ने दिता है, और तू बंदगी नहीं कीती तां तू अपने मनुखा जन्म नू कौडियां दे बदले वेच छड़िया, उस स्वासा नू कौडियां दे बदले वेच छड़िया। ताई आखिया